0: गोया इलामरानी कैसेट एल्बम का समले बरसानी एंड द एल्बम नेम इज फ्रिक
1: नो फरलार मी पियो द अमोरे से नो साई कोसा इल पेकाटो.